0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर
2: और सिस्टर अनुग्रह मिंज।
0: पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं।

जब शासक तुम पर अप्रसन्न हो तो अपना काम मत छोड़ो, क्योंकि धैर्य बहुत सी गलतियों से बचाता है। मैंने पृथ्वी पर एक बुराई देखी है, एक ऐसी गलती जिसे शासक किया करते हैं। मूर्खों की नियुक्ति बड़े बड़े पदों पर होती है और धनियों की छोटे छोटे पदों पर। मैंने दासों को घोड़ों पर यात्रा करते और शासकों को दासों जैसा पैदल जाते देखा है। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 10वें अध्याय के 4 से लेकर 7 तक के पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इस अध्याय का मुख्य संदेश समझदारी और मूर्खता के बीच एक व्यावहारिक अंतर दर्शाना है। थोड़ी सी मूर्खता की नुकसान पहुंचाने वाली ताकत, तैयारी की अहमियत और अपने शब्दों पर काबू रखने की जरूरत पर इस अध्याय में बल दिया गया है। यह अध्याय प्रज्ञा, बुद्धि और समझदारी के शांत और प्रायः नज़रअंदाज किए जाने वाले लाभों और मूर्खता के विनाशकारी स्वभाव के बीच अंतर दर्शाता है। उपदेशक ने यह कहना चाहा है कि मनुष्य का आंतरिक स्वभाव उसे सुरक्षा या बर्बादी की ओर ले जा सकता है। थोड़ी सी मूर्खता प्रज्ञा और सम्मान को चौपट कर सकती है, जबकि समझदारी भरी सोच स्वाभाविक रूप से लाभदायक, हितकारी और सुरक्षित विकल्पों की ओर ले जाती है। अस्तु, प्रज्ञा की कभी उपेक्षा न की जाए, बल्कि उसे जीवन के अनमोल धन की तरह संचित रखा जाए। इस अध्याय के 4थे पद में उपदेशक की यही सलाह है कि जब आप किसी शासक, मालिक या नियोजक के साथ परेशानी में हों, तो घबराने या नाराज होने से बेहतर है कि आप खुद पर नियंत्रण रखें, अपने क्रोध को जाहिर न होने दें और शांत रहें, क्योंकि धैर्यपूर्वक शांत रहने से किसी बुरे झगड़े को और बिगड़ने से रोका जा सकता है। उपदेशक स्मरण दिलाता है कि इस जीवन में सब कुछ सही नहीं होता, सब कुछ न्यायपूर्ण नहीं होता, तथापि प्रत्येक मनुष्य अपनी प्रज्ञा और विवेक का इस्तेमाल कर अन्याय के आगे झुके नहीं, बल्कि डटकर उसका सामना करे। तदुपरांत उपदेशक यह भी याद दिलाता है कि खराब नेतृत्व की वजह से कार्यस्थलों पर हमने इस बात का अनुभव किया है कि मूर्ख और बेवकूफ या नाकाबिल लोगों को ऊंचे ऊंचे पदों पर बिठा दिया जाता है, जबकि बुद्धिसम्मत, समझदार और काबिल तथा योग्य लोगों को नीचे के पद, निम्न पद दिए जाते हैं। यह सब हमारी खामियों के कारण नहीं, अपितु अन्यायपूर्ण शासकों और उनके नेतृत्व की वजह से होता है। इसलिए व्यक्ति हर पल अन्याय के विरुद्ध सावधान रहे और सदैव सत्य एवं न्याय के रास्ते पर चलकर अपना जीवन सुखमय बनाए।

और अब आइए उपदेशक ग्रंथ के 10वें अध्याय के 8 से लेकर 11 तक के पदों पर दृष्टिपात करें। ये पद इस प्रकार हैं। जो गड्ढा खोदता है वह उसमें गिर सकता है, जो दीवार में सेंध लगाता उसे सांप काट सकता है, जो खदान से पत्थर निकालता उसे चोट लग सकती है, जो लकड़ियां चीरता उसे उनसे खतरा रहता है। यदि तुम भोतरे कुल्हाड़े की धार नहीं पजाते तो दुगना परिश्रम करना पड़ेगा। बुद्धिमानी सफलता की कुंजी है। यदि मंत्र सुनने से पहले ही सांप काट ले तो सपेरा क्या कर सकता है। श्रोताओं, वस्तुतः यहां उपदेशक हम सबसे सदैव सजग, सचेत और सक्रिय रहने का आग्रह करता है। यदि हम सजग रहे, सचेत रहे और सक्रिय रहे तो सावधानी पूर्वक अपने कामों का संपादन करेंगे और हमारे प्रति कोई अनहोनी नहीं होगी, हमें किसी तरह की हानि नहीं पहुंचेगी। जबकि यदि हम लापरवाह रहे तो काम हर तरह से बिगड़ सकता है। गड्ढा खोदते समय हम खुद उसमें गिर सकते हैं। दीवार में सेंध लगाते समय सतर्क न रहे तो सांप दीवार के भीतर से निकलकर हमें काट सकता है। खदान से पत्थर निकालते समय भी यदि चौकस न रहे तो चोट लग सकती है। लकड़ियां चीरने वाले को भी इसी तरह सावधान रहना पड़ता है। और यदि कुल्हाड़े की धार नहीं करेंगे तो बहुत अधिक मेहनत के बाद भी हमारा काम पूरा नहीं हो सकेगा और हम केवल थकावट और थकावट ही महसूस करेंगे। श्रोताओं, ये सब व्यावहारिक सी बातें हैं, स्वाभाविक सी बातें हैं, जिनके द्वारा उपदेशक ने हमें सदैव चौकस रहने के लिए कहा है। वह कहता है, बुद्धिमानी सफलता की कुंजी है। यदि व्यक्ति सफल होना चाहे तो उसे प्रज्ञा, विवेक और सूझबूझ के साथ अपने सभी कार्यों को निपटाना चाहिए, अन्यथा वह विफल और असंतुष्ट ही रहेगा। सुलेमान ने ऐसे कई व्यक्तियों के उदाहरण पेश किए हैं जिन्होंने गलत या बेवकूफी भरे काम किए और फिर उसकी वजह से दुख उठाया। सुलेमान चाहते थे कि मनुष्य को यह ज्ञान हो जाए कि यदि वह गलत या बेवकूफी भरे काम करेगा तो उनकी वजह से उसे अवश्य ही दुख उठाना पड़ेगा। जो कोई भी दीवार तोड़ेगा उसे सांप काटेगा। उपदेशक के इस विचार को श्रोताओं, अलेक्जेंडर मैक्लारेन ने आध्यात्मिक मोड़ प्रदान कर कहा है कि जो कोई संयम की दीवार गिराएगा उसे सांप काटेगा। काटते हाथ, टूटा हुआ शरीर, बर्बाद हुई इज्जत, खत्म हुई ख्वाहिशें, बर्बाद हुई जिंदगी, गरीबी, शर्म और कमजोर इच्छा शक्ति, मौत, ये सब वो सांप हैं जो कई मामलों में नियम तोड़ने वाले को काटते हैं। और F.B. मेयर ने उपदेशक द्वारा कुल्हाड़े की तेज धार की तुलना व्यक्ति की शक्ति से की है। जब बहुत अधिक परिश्रम के बाद व्यक्ति थक जाता है तब मानो उसके शरीर रूपी कुल्हाड़े में धार नहीं रह जाती, और ऐसे समय में प्रभु ईश्वर की ओर अभिमुख होकर शक्ति और साहस की प्रार्थना करना जरूरी बन जाता है। विश्वास कीजिए, एक बेजान धार और कम ताकत के मुकाबले एक तेज धार और ईश्वर की कृपा एवं शक्ति से अधिक काम होता है। आगे 10वें अध्याय के 11वें पद में उपदेशक कहता है, बुद्धिमानी सफलता की कुंजी है। यदि मंत्र सुनने से पहले सांप काट ले तो सपेरा क्या कर सकता है। श्रोताओं, सांप को जब लगे कि उसका जीवन खतरे में है तो वह व्यक्तियों को काट लेता है, और सपेरा यही प्रयास करता है कि उसके मंत्र से सांप मुक्त हो जाए और किसी को काटे नहीं। इसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति को भी हर पल अपने जीवन पर खतरा बना हुआ नजर आता है और इसीलिए वह अनर्गल बका करता है। हर क्षण कुछ न कुछ बोलने वाला मूर्ख भी काटने वाले सांप की तरह ही है। उसके मूर्खतापूर्ण शब्द ही उसे निगल लेते हैं या उसका अनर्थ कर देते हैं। जबकि बुद्धिमान व्यक्ति शांत रहता वह उतना ही बोलता है जितना जरूरी होता है। उसके मुख से निकलने वाले शब्द अर्थपूर्ण और सामने वाले के लिए लाभकारी, हितकारी होते हैं। इसीलिए उपदेशक कहता है, बुद्धिमान बनो,
क्योंकि बुद्धिमानी ही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति बुद्धि, विवेक और प्रज्ञा से अपना जीवन यापन करता है, जो ईश नियमों का पालन कर अपने दायित्वों को भली प्रकार निभाता है, वही धन्य है, वही ईश कृपा का पात्र बनता है।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। युद्ध के हथियार की जगह शांति के ईश्वर हमें ठीक करने, मेल मिलाप करने और प्यार की सभ्यता बनाने की ताकत देते हैं। संत पापा लियो 14वें ने यह बात सृष्टि की देखभाल के लिए प्रार्थना के 10वें विश्व दिवस पर अपने संदेश में कही, जिसे वाटिकन प्रेस ऑफिस ने आज गुरुवार को प्रकाशित किया। कलीसिया 1 सितंबर को सृष्टि की देखभाल के लिए प्रार्थना का 10वां विश्व दिवस मना रही है और इस साल की थीम है, वे अपनी तलवारों को हाल के फाल और अपने भालों को हसिया बना लेंगे। इसाया अध्याय 2 पद संख्या 4। संत पापा ने कहा, हमारे प्रभु येसु मसीह इसलिए आए ताकि जीवन मिले और वह भी भरपूर मात्रा में। जीवन का यह उपहार शिष्यों के तौर पर हमारे मिशन और प्यार की सभ्यता बनाने की हमारे साझा बुलावे के दिल में है। जब हम दुनिया की देखभाल हेतु विश्व प्रार्थना दिवस मना रहे हैं, तो हम एक बार फिर जीवन के उपहार पर सोचने और उसे बनाए रखने वाली धरती की कद्र करने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए ये हमारे सृष्टिकर्ता की प्रशंसा करने का ठोस तरीका है। आज हम कई मुश्किलें और इंसानों की बहुत तकलीफें देख रहे हैं, साथ ही ऐसा लगता है कि दुनिया के तालमेल वाले संतुलन में रुकावट तेजी से बढ़ रही है। ये घटनाएं एक दूसरे से अलग नहीं है, ये एक घायल दुनिया से ठीक होने और शांति के लिए पुकार है। जीवन दाता ईश्वर जो येसु मसीह में प्रकट हुए हैं, ऐसी शांति देते हैं जो दुनिया नहीं दे सकती। यह शांति ना तो ऊपरी है और ना ही कुछ समय के लिए। यह मसीह के हमेशा रहने वाले प्यार और हर इंसान के लिए उनकी देखभाल से आती है। फिर भी शांति की यह प्रतिज्ञा दुनिया के कई हिस्सों में हम जो सच्चाई देखते हैं उससे बिल्कुल अलग है। आगे संत पापा ने कहा, युद्ध ऐसे जख्म छोड़ देता है जो लड़ाई के मैदान से कहीं आगे तक जाते हैं। यह जाने लेता है, परिवार को तोड़ देता है और लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने को मजबूर कर देता है, जिससे डर, अन्याय और बंटवारा और गहरा हो जाता है। युद्ध अपने पीछे सामाजिक और पारिस्थितिकीय तबाही भी छोड़ जाता है जो पीढ़ियों तक बनी रहती है। संत पापा ने कहा, तलवारों को पीटकर हाल के फाल बनाने का बुलावा सिर्फ देशों के लिए एक नजरिया नहीं है, बल्कि हर इंसान के लिए एक बुलावा है। यह हमें नुकसान को जिंदगी में बदलने के लिए बुलाता है। फिर भी यह बदलाव सिर्फ बाहरी बदलाव से नहीं हो सकता, इसके लिए ईश्वर की कृपा के सहयोग द्वारा एक निजी और सामूहिक परिवर्तन जरूरी है। ईश्वर के पास लौटना, जो हमारी इच्छाओं को फिर से व्यवस्थित करेंगे, हमारे जख्मों को भरेंगे और हमें अच्छाई में बढ़ने में मदद करेंगे। अंत में संत पापा ने प्रार्थना की कि ईश्वर हमें अपने इस रास्ते पर चलने की हिम्मत दें, ताकि हमारे समय में तलवारें सच में हल्के फाल बन सकें और सुसमाचार का वादा हमारी दुनिया में और गहरी जड़ें जमा सके और ख्रीस्त की शांति पूरी दुनिया पर राज कर सके। उधर रातों रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक नए हमले का ऐलान किया। इसे किसी भी देश के खिलाफ अब तक का सबसे खतरनाक आर्थिक कार्रवाई, एक आर्थिक दिवस और अनोखा अकेलापन कहा। ट्रंप का यह भी दावा है कि तेहरान ने वह मौका गंवा दिया जो वाशिंगटन ने समझौते तक पहुंचने के लिए दिया था, और उन्होंने किसी भी ऐसे देश के खिलाफ बहुत बड़े आर्थिक नतीजे की धमकी दी जो वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या सरकारी एजेंसियों को ईरान को सहायता देने की अनुमति देता है। ट्रंप ने कहा, हमें अपने सभी साथियों को ईरानी खतरों को अलग अलग करने और हराने के लिए अमेरिका के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, और दोहराया कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होगा। उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिका की घोषणा को फेल होने वाली पॉलिसी का जारी रहना बताया
और वाशिंगटन पर आर्थिक आतंक का आरोप लगाया जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और दूसरे देशों की संप्रभुता को खतरे में डाल सकता है। ईरानी मीडिया ने भी ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने इसे फेल मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन का नया वर्जन बताया, जबकि फार्स ने ईरान के संभावित पतन के अमेरिका के अनुमानों को भ्रम कहा। आर्थिक दबाव के साथ मिलिट्री दबाव भी जुड़ा हुआ है। क्रांतिकारी रक्षकों ने चेतावनी दी कि किसी नए झगड़े की स्थिति में तेहरान पहले से ज्यादा खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करेगा, जिससे नई पीढ़ी के वारहेड और ज्यादा सटीक और रेंज वाली मिसाइलें होंगी। इस बीच जमीन पर होर्मुज की खाड़ी लड़ाई का एक मुख्य केंद्र बनी हुई है। यह रास्ता जिससे युद्ध से पहले दुनिया का लगभग पांचवां हिस्सा हाइड्रोकार्बन गुजरता था, लगभग पूरी तरह से बंद है। 28 फरवरी को शुरू हुए इस झगड़े की मिलिट्री कीमत बहुत ज्यादा है। पेंटागन के ताजा डेटा के अनुसार लड़ाई शुरुआत होने के बाद से 757 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं और 18 मारे गए हैं। उधर आज रात यूक्रेन की राजधानी कीव में 12 लोग और पास के इलाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि करीब 40 लोग घायल हो गए। एक ऊंची इमारत की ऊपरी मंजिल तबाह हो गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लिखा, रूसी हमलों से प्रभावित जगहों पर बचाव टीमें पूरी रात काम कर रही हैं। यह एक बहुत बड़ा हमला था। रूस लंबे समय से तैयारी कर रहा था। अलग अलग जगह की बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा था, जिसका मकसद रिहायशी इमारतों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुँचाना था। इस हमले का असर देश के दूसरे इलाकों में भी पड़ा। ओडेसा इलाके में रूसी ड्रोन ने मालदोवा के साथ एक बॉर्डर क्रॉसिंग पर हमला किया, जबकि चेरनिहाइव इलाके में गैस संरचनाओं को निशाना बनाया गया। एक बाल चिकित्सालय और एक स्कूल भी हमले के शिकार हुए। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर
2: और सिस्टर अनुग्रह मिंज।
0: पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं।

जब शासक तुम पर अप्रसन्न हो तो अपना काम मत छोड़ो, क्योंकि धैर्य बहुत सी गलतियों से बचाता है। मैंने पृथ्वी पर एक बुराई देखी है, एक ऐसी गलती जिसे शासक किया करते हैं। मूर्खों की नियुक्ति बड़े बड़े पदों पर होती है और धनियों की छोटे छोटे पदों पर। मैंने दासों को घोड़ों पर यात्रा करते और शासकों को दासों जैसा पैदल जाते देखा है। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 10वें अध्याय के 4 से लेकर 7 तक के पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इस अध्याय का मुख्य संदेश समझदारी और मूर्खता के बीच एक व्यावहारिक अंतर दर्शाना है। थोड़ी सी मूर्खता की नुकसान पहुंचाने वाली ताकत, तैयारी की अहमियत और अपने शब्दों पर काबू रखने की जरूरत पर इस अध्याय में बल दिया गया है। यह अध्याय प्रज्ञा, बुद्धि और समझदारी के शांत और प्रायः नज़रअंदाज किए जाने वाले लाभों और मूर्खता के विनाशकारी स्वभाव के बीच अंतर दर्शाता है। उपदेशक ने यह कहना चाहा है कि मनुष्य का आंतरिक स्वभाव उसे सुरक्षा या बर्बादी की ओर ले जा सकता है। थोड़ी सी मूर्खता प्रज्ञा और सम्मान को चौपट कर सकती है, जबकि समझदारी भरी सोच स्वाभाविक रूप से लाभदायक, हितकारी और सुरक्षित विकल्पों की ओर ले जाती है। अस्तु, प्रज्ञा की कभी उपेक्षा न की जाए, बल्कि उसे जीवन के अनमोल धन की तरह संचित रखा जाए। इस अध्याय के 4 पद में उपदेशक की यही सलाह है कि जब आप किसी शासक, मालिक या नियोजक के साथ परेशानी में हों, तो घबराने या नाराज होने से बेहतर है कि आप खुद पर नियंत्रण रखें, अपने क्रोध को जाहिर न होने दें और शांत रहें, क्योंकि धैर्यपूर्वक शांत रहने से किसी बुरे झगड़े को और बिगड़ने से रोका जा सकता है। उपदेशक स्मरण दिलाता है कि इस जीवन में सब कुछ सही नहीं होता, सब कुछ न्यायपूर्ण नहीं होता, तथापि प्रत्येक मनुष्य अपनी प्रज्ञा और विवेक का इस्तेमाल कर अन्याय के आगे झुके नहीं, बल्कि डटकर उसका सामना करे। तदुपरांत उपदेशक यह भी याद दिलाता है कि खराब नेतृत्व की वजह से कार्यस्थलों पर हमने इस बात का अनुभव किया है कि मूर्ख और बेवकूफ या नाकाबिल लोगों को ऊंचे ऊंचे पदों पर बिठा दिया जाता है, जबकि बुद्धिसम्मत, समझदार और काबिल तथा योग्य लोगों को नीचे के पद, निम्न पद दिए जाते हैं। यह सब हमारी खामियों के कारण नहीं, अपितु अन्यायपूर्ण शासकों और उनके नेतृत्व की वजह से होता है। इसलिए व्यक्ति हर पल अन्याय के विरुद्ध सावधान रहे और सदैव सत्य एवं न्याय के रास्ते पर चलकर अपना जीवन सुखमय बनाए।

और अब आइए उपदेशक ग्रंथ के 10वें अध्याय के 8 से लेकर 11 तक के पदों पर दृष्टिपात करें। ये पद इस प्रकार हैं। जो गड्ढा खोदता है वह उसमें गिर सकता है, जो दीवार में सेंध लगाता उसे सांप काट सकता है, जो खदान से पत्थर निकालता उसे चोट लग सकती है, जो लकड़ियां चीरता उसे उनसे खतरा रहता है। यदि तुम भोतरे कुल्हाड़े की धार नहीं पजाते तो दुगना परिश्रम करना पड़ेगा। बुद्धिमानी सफलता की कुंजी है। यदि मंत्र सुनने से पहले ही सांप काट ले तो सपेरा क्या कर सकता है। श्रोताओं, वस्तुतः यहां उपदेशक हम सबसे सदैव सजग, सचेत और सक्रिय रहने का आग्रह करता है। यदि हम सजग रहे, सचेत रहे और सक्रिय रहे तो सावधानी पूर्वक अपने कामों का संपादन करेंगे और हमारे प्रति कोई अनहोनी नहीं होगी, हमें किसी तरह की हानि नहीं पहुंचेगी। जबकि यदि हम लापरवाह रहे तो काम हर तरह से बिगड़ सकता है। गड्ढा खोदते समय हम खुद उसमें गिर सकते हैं। दीवार में सेंध लगाते समय सतर्क न रहे तो सांप दीवार के भीतर से निकलकर हमें काट सकता है। खदान से पत्थर निकालते समय भी यदि चौकस न रहे तो चोट लग सकती है। लकड़ियां चीरने वाले को भी इसी तरह सावधान रहना पड़ता है। और यदि कुल्हाड़े की धार नहीं करेंगे तो बहुत अधिक मेहनत के बाद भी हमारा काम पूरा नहीं हो सकेगा और हम केवल थकावट और थकावट ही महसूस करेंगे। श्रोताओं, ये सब व्यावहारिक सी बातें हैं, स्वाभाविक सी बातें हैं, जिनके द्वारा उपदेशक ने हमें सदैव चौकस रहने के लिए कहा है। वह कहता है, बुद्धिमानी सफलता की कुंजी है। यदि व्यक्ति सफल होना चाहे तो उसे प्रज्ञा, विवेक और सूझबूझ के साथ अपने सभी कार्यों को निपटाना चाहिए, अन्यथा वह विफल और असंतुष्ट ही रहेगा। सुलेमान ने ऐसे कई व्यक्तियों के उदाहरण पेश किए हैं जिन्होंने गलत या बेवकूफी भरे काम किए और फिर उसकी वजह से दुख उठाया। सुलेमान चाहते थे कि मनुष्य को यह ज्ञान हो जाए कि यदि वह गलत या बेवकूफी भरे काम करेगा तो उनकी वजह से उसे अवश्य ही दुख उठाना पड़ेगा। जो कोई भी दीवार तोड़ेगा उसे सांप काटेगा। उपदेशक के इस विचार को श्रोताओं, अलेक्जेंडर मैक्लारेन ने आध्यात्मिक मोड़ प्रदान कर कहा है कि जो कोई संयम की दीवार गिराएगा उसे सांप काटेगा। काटते हाथ, टूटा हुआ शरीर, बर्बाद हुई इज्जत, खत्म हुई ख्वाहिशें, बर्बाद हुई जिंदगी, गरीबी, शर्म और कमजोर इच्छा शक्ति, मौत, ये सब वो सांप हैं जो कई मामलों में नियम तोड़ने वाले को काटते हैं। और F.B. मेयर ने उपदेशक द्वारा कुल्हाड़े की तेज धार की तुलना व्यक्ति की शक्ति से की है। जब बहुत अधिक परिश्रम के बाद व्यक्ति थक जाता है तब मानो उसके शरीर रूपी कुल्हाड़े में धार नहीं रह जाती, और ऐसे समय में प्रभु ईश्वर की ओर अभिमुख होकर शक्ति और साहस की प्रार्थना करना जरूरी बन जाता है। विश्वास कीजिए, एक बेजान धार और कम ताकत के मुकाबले एक तेज धार और ईश्वर की कृपा एवं शक्ति से अधिक काम होता है। आगे 10वें अध्याय के 11वें पद में उपदेशक कहता है, बुद्धिमानी सफलता की कुंजी है। यदि मंत्र सुनने से पहले सांप काट ले तो सपेरा क्या कर सकता है। श्रोताओं, सांप को जब लगे कि उसका जीवन खतरे में है तो वह व्यक्तियों को काट लेता है, और सपेरा यही प्रयास करता है कि उसके मंत्र से सांप मुक्त हो जाए और किसी को काटे नहीं। इसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति को भी हर पल अपने जीवन पर खतरा बना हुआ नजर आता है और इसीलिए वह अनर्गल बका करता है। हर क्षण कुछ न कुछ बोलने वाला मूर्ख भी काटने वाले सांप की तरह ही है। उसके मूर्खतापूर्ण शब्द ही उसे निगल लेते हैं या उसका अनर्थ कर देते हैं। जबकि बुद्धिमान व्यक्ति शांत रहता वह उतना ही बोलता है जितना जरूरी होता है। उसके मुख से निकलने वाले शब्द अर्थपूर्ण और सामने वाले के लिए लाभकारी, हितकारी होते हैं। इसीलिए उपदेशक कहता है, बुद्धिमान बनो,
क्योंकि बुद्धिमानी ही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति बुद्धि, विवेक और प्रज्ञा से अपना जीवन यापन करता है, जो ईश नियमों का पालन कर अपने दायित्वों को भली प्रकार निभाता है, वही धन्य है, वही ईश कृपा का पात्र बनता है।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। युद्ध के हथियार की जगह शांति के ईश्वर हमें ठीक करने, मेल मिलाप करने और प्यार की सभ्यता बनाने की ताकत देते हैं। संत पापा लियो 14वें ने यह बात सृष्टि की देखभाल के लिए प्रार्थना के 10वें विश्व दिवस पर अपने संदेश में कही, जिसे वाटिकन प्रेस ऑफिस ने आज गुरुवार को प्रकाशित किया। कलीसिया 1 सितंबर को सृष्टि की देखभाल के लिए प्रार्थना का 10वां विश्व दिवस मना रही है और इस साल की थीम है, वे अपनी तलवारों को हाल के फाल और अपने भालों को हसिया बना लेंगे। इसाया अध्याय 2 पद संख्या 4। संत पापा ने कहा, हमारे प्रभु येसु मसीह इसलिए आए ताकि जीवन मिले और वह भी भरपूर मात्रा में। जीवन का यह उपहार शिष्यों के तौर पर हमारे मिशन और प्यार की सभ्यता बनाने की हमारे साझा बुलावे के दिल में है। जब हम दुनिया की देखभाल हेतु विश्व प्रार्थना दिवस मना रहे हैं, तो हम एक बार फिर जीवन के उपहार पर सोचने और उसे बनाए रखने वाली धरती की कद्र करने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए ये हमारे सृष्टिकर्ता की प्रशंसा करने का ठोस तरीका है। आज हम कई मुश्किलें और इंसानों की बहुत तकलीफें देख रहे हैं। साथ ही ऐसा लगता है कि दुनिया के तालमेल वाले संतुलन में रुकावट तेजी से बढ़ रही है। ये घटनाएं एक दूसरे से अलग नहीं है, ये एक घायल दुनिया से ठीक होने और शांति के लिए पुकार है। जीवन दाता ईश्वर जो येसु मसीह में प्रकट हुए हैं, ऐसी शांति देते हैं जो दुनिया नहीं दे सकती। यह शांति ना तो ऊपरी है और ना ही कुछ समय के लिए। यह मसीह के हमेशा रहने वाले प्यार और हर इंसान के लिए उनकी देखभाल से आती है। फिर भी शांति की यह प्रतिज्ञा दुनिया के कई हिस्सों में हम जो सच्चाई देखते हैं उससे बिल्कुल अलग है। आगे संत पापा ने कहा, युद्ध ऐसे जख्म छोड़ देता है जो लड़ाई के मैदान से कहीं आगे तक जाते हैं। यह जाने लेता है, परिवार को तोड़ देता है और लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने को मजबूर कर देता है, जिससे डर, अन्याय और बंटवारा और गहरा हो जाता है। युद्ध अपने पीछे सामाजिक और पारिस्थितिकीय तबाही भी छोड़ जाता है जो पीढ़ियों तक बनी रहती है। संत पापा ने कहा, तलवारों को पीटकर हाल के फाल बनाने का बुलावा सिर्फ देशों के लिए एक नजरिया नहीं है, बल्कि हर इंसान के लिए एक बुलावा है। यह हमें नुकसान को जिंदगी में बदलने के लिए बुलाता है। फिर भी यह बदलाव सिर्फ बाहरी बदलाव से नहीं हो सकता, इसके लिए ईश्वर की कृपा के सहयोग द्वारा एक निजी और सामूहिक परिवर्तन जरूरी है। ईश्वर के पास लौटना, जो हमारी इच्छाओं को फिर से व्यवस्थित करेंगे, हमारे जख्मों को भरेंगे और हमें अच्छाई में बढ़ने में मदद करेंगे। अंत में संत पापा ने प्रार्थना की कि ईश्वर हमें अपने इस रास्ते पर चलने की हिम्मत दें, ताकि हमारे समय में तलवारें सच में हल्के फाल बन सकें और सुसमाचार का वादा हमारी दुनिया में और गहरी जड़ें जमा सके और ख्रीस्त की शांति पूरी दुनिया पर राज कर सके। उधर रातों रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक नए हमले का ऐलान किया। इसे किसी भी देश के खिलाफ अब तक का सबसे खतरनाक आर्थिक कार्रवाई, एक आर्थिक दिवस और अनोखा अकेलापन कहा। ट्रंप का यह भी दावा है कि तेहरान ने वह मौका गंवा दिया जो वाशिंगटन ने समझौते तक पहुंचने के लिए दिया था, और उन्होंने किसी भी ऐसे देश के खिलाफ बहुत बड़े आर्थिक नतीजे की धमकी दी जो वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या सरकारी एजेंसियों को ईरान को सहायता देने की अनुमति देता है। ट्रंप ने कहा, हमें अपने सभी साथियों को ईरानी खतरों को अलग अलग करने और हराने के लिए अमेरिका के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, और दोहराया कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होगा। उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिका की घोषणा को फेल होने वाली पॉलिसी का जारी रहना बताया और वाशिंगटन पर आर्थिक आतंक का आरोप लगाया जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और दूसरे देशों की संप्रभुता को खतरे में डाल सकता है।
ईरानी मीडिया ने भी ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने इसे फेल मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन का नया वर्जन बताया, जबकि फार्स ने ईरान के संभावित पतन के अमेरिका के अनुमानों को भ्रम कहा। आर्थिक दबाव के साथ मिलिट्री दबाव भी जुड़ा हुआ है। क्रांतिकारी रक्षकों ने चेतावनी दी कि किसी नए झगड़े की स्थिति में तेहरान पहले से ज्यादा खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करेगा, जिससे नई पीढ़ी के वारहेड और ज्यादा सटीक और रेंज वाली मिसाइलें होंगी। इस बीच जमीन पर होर्मुज की खाड़ी लड़ाई का एक मुख्य केंद्र बनी हुई है। यह रास्ता जिससे युद्ध से पहले दुनिया का लगभग पांचवां हिस्सा हाइड्रोकार्बन गुजरता था, लगभग पूरी तरह से बंद है। 28 फरवरी को शुरू हुए इस झगड़े की मिलिट्री कीमत बहुत ज्यादा है। पेंटागन के ताजा डेटा के अनुसार लड़ाई शुरुआत होने के बाद से 757 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं और 18 मारे गए हैं। उधर आज रात यूक्रेन की राजधानी कीव में 12 लोग और पास के इलाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि करीब 40 लोग घायल हो गए। एक ऊंची इमारत की ऊपरी मंजिल तबाह हो गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लिखा, रूसी हमलों से प्रभावित जगहों पर बचाव टीमें पूरी रात काम कर रही हैं। यह एक बहुत बड़ा हमला था। रूस लंबे समय से तैयारी कर रहा था। अलग अलग जगह की बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा था, जिसका मकसद रिहायशी इमारतों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुँचाना था। इस हमले का असर देश के दूसरे इलाकों में भी पड़ा। ओडेसा इलाके में रूसी ड्रोन ने मालदोवा के साथ एक बॉर्डर क्रॉसिंग पर हमला किया, जबकि चेरनीहाइव इलाके में गैस संरचनाओं को निशाना बनाया गया। एक बाल चिकित्सालय और एक स्कूल भी हमले के शिकार हुए। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनते।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे

0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: दुख के भेद। पहला भेद, बारी में प्रभु यीशु की प्राण पीड़ा।
0: मतलब, हमें दुख तकलीफ में मदद मिले। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख के दूसरा भेद, यीशु कोड़ों से मारे जाते हैं,
0: मतलब हमारे रिश्तेदारों की आत्मिक भलाई के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का तीसरा भेद, प्रभु येसु को सर पर कांटों का मुकुट पहनाया जाता है।
0: मतलब हम दुख में ना कुरकुराएं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का चौथा भेद, प्रभु यीशु अपने कंधों पर भारी क्रूस उठाते हैं,
0: मतलब हमारा मरण पवित्र हो। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का पांचवा भेद, प्रभु यीशु को क्रूस पर ठोंका जाता है,
0: मतलब शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,

0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर।

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, अफगानिस्तान में तालिबान शासन के 5 वर्ष पूरे होने पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों समेत आम लोगों पर पाबंदियां लगातार बढ़ रही हैं। अफगान लड़कियों की एक पूरी पीढ़ी शिक्षा से वंचित हो रही है। मानवाधिकार विशेषज्ञों ने कहा कि लैंगिक आधार पर लोगों को जानबूझकर उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित करना मानवता के विरुद्ध उत्पीड़न के अपराध के दायरे में आता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहा है। पाबंदियों का असर महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच पर भी पड़ा है। विशेषज्ञों ने कहा, महिलाओं को उनके पहनावे या साथ में पुरुष अभिभावक न होने के कारण अस्पतालों से लौटा दिया गया, जिससे वे स्वास्थ्य सेवाओं के अपने अधिकार से वंचित हुई। देश की 1/3 से अधिक आबादी गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रही है। वहीं लगभग 40 लाख बच्चे गंभीर कुपोषण से जूझ रहे हैं। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: अफगानिस्तान में तालिबान शासन के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं, मगर महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों पर पाबंदियां लगातार बढ़ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के अनुसार तालिबान प्रशासन ने शिक्षा, कामकाज और आवाजाही की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने वाले 100 से भी अधिक फरमान जारी किए हैं। यूएन विमेन ने इसे दुनिया में महिला अधिकारों का सबसे गंभीर संकट बताया है। एजेंसी के अनुसार इन पाबंदियों ने भेदभाव को व्यवस्था का हिस्सा बना दिया है और महिलाओं को सार्वजनिक जीवन से लगभग बाहर कर दिया है। यूनेस्को ने कहा है कि अफगानिस्तान दुनिया का एकमात्र देश है जहां प्राथमिक स्तर के बाद लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा पर औपचारिक प्रतिबंध है। अनुमान है कि 24 लाख लड़कियां भी माध्यमिक शिक्षा से वंचित हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने कहा है कि ये दमन अब संस्थागत लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक रंगभेद का रूप ले चुका है। उन्होंने देशों से लैंगिक रंगभेद को मानवता के विरुद्ध एक अलग अपराध के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कानून में शामिल करने के प्रयासों का समर्थन करने की अपील की है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों पर स्पष्ट और मापने योग्य प्रगति के बिना तालिबान प्रशासन से संबंध सामान्य नहीं किए जाने चाहिए। इस बीच सहायता धनराशि में भारी कटौती से स्वास्थ्य, भोजन और जीवन रक्षक सेवाओं पर दबाव बढ़ रहा है। WFP के अनुसार अफगानिस्तान में 1,40,00,000 लोग भूख के संकट का सामना कर रहे हैं।
2: फरवरी 2022 को यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से संयुक्त राष्ट्र ने कम से कम 16,874 आम नागरिकों के मारे जाने और 51,173 के घायल होने की पुष्टि की है। मृतकों में 820 और घायलों में 3,126 बच्चे शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निगरानी मिशन के अनुसार यूक्रेन में इस वर्ष के जुलाई के दौरान हताहत आम नागरिकों की संख्या मार्च 2022 के बाद से सबसे अधिक रही। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: यूक्रेन में जुलाई महीने में आम नागरिकों के हताहत होने की संख्या मार्च 2022 के बाद सबसे अधिक रही है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निगरानी मिशन का कहना है कि इस वर्ष नागरिकों को पहुंची हानि लगातार बढ़ रही है और जुलाई में ये नए उच्च स्तर पर पहुंच गई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की सहायक प्रवक्ता डैनियला ग्रॉस डी एल्मेडा ने जानकारी देते हुए बताया,
4: The UN Human Rights Monitoring Mission today said that more civilians were killed or injured in the country.
3: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निगरानी मिशन ने कहा है कि जुलाई 2026 में यूक्रेन में मार्च 2022 के बाद सबसे अधिक आम नागरिक मारे या घायल हुए। मिशन ने पुष्टि की है कि जुलाई में कम से कम 437 आम नागरिक मारे गए और 2610 घायल हुए। ये पिछले महीने की तुलना में 30% और जुलाई 2025 की तुलना में 70% अधिक है। हालांकि वास्तविक संख्या इससे अधिक हो सकती है क्योंकि निगरानी मिशन अब भी जानकारी की पुष्टि कर रहा है।
4: The actual figure is likely higher as the monitoring mission continues to verify information.
3: संयुक्त राष्ट्र महासचिव की सहायक प्रवक्ता डैनियला ग्रॉस डी एल्मेडा के शब्द। यूएन निगरानीकर्ताओं के अनुसार लंबी दूरी की मिसाइलें, ड्रोन, ग्लाइड बम और अग्रिम मोर्चे के पास कम दूरी के ड्रोन हमले नागरिकों के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं। जुलाई में राजधानी कीव भीषण हमलों से सबसे अधिक प्रभावित शहरों में रही।
2: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य के अस्थिर पूर्वी हिस्सों में इबोला संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है कि मरीजों का समय रहते पता लगाकर उन्हें अलग रखना मुश्किल हो जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला का मौजूदा प्रकोप अब देश के इतिहास का सबसे घातक प्रकोप बन गया है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार इस बीमारी से अब तक 2,325 लोगों की मौत हो चुकी है। यह संख्या DRC में 2018 से 2020 के इबोला प्रकोप में हुई 2,299 मौतों के आंकड़े को पार कर गई है। उस प्रकोप को अब तक देश का सबसे घातक इबोला प्रकोप माना जाता था। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला प्रकोप पर काबू पाने की कोशिशें तेज हुई हैं, लेकिन संक्रमण अब भी बहुत तेजी से फैल रहा है। WHO के अनुसार संक्रमित लोगों के संपर्क में आए अधिक लोगों की पहचान हो रही है, लेकिन कई संक्रमण श्रृंखलाएं अब भी पकड़ में नहीं आ रही हैं। कई मरीज उपचार के बिना ही बीमारी के गंभीर चरण तक पहुंच रहे हैं। प्रकोप मुख्य रूप से इतुरी प्रांत में केंद्रित है, लेकिन नॉर्थ कीवू और हॉट उले में भी मामले सामने आ रहे हैं। प्रभावित 5 प्रांतों के 53 स्वास्थ्य क्षेत्रों में संक्रमण फैल चुका है। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडेनॉम गेब्रेसस ने चेतावनी देते हुए कहा,
5: इट्स ऑलरेडी द सेकंड बिगेस्ट इबोला एपिडेमिक ऑन रिकॉर्ड।
3: डॉक्टर टेड्रोस कह रहे हैं कि अब तक दर्ज दूसरा सबसे बड़ा इबोला प्रकोप है और ये पिछले सभी इबोला प्रकोपों से अधिक तेजी से फैल रहा है। WHO ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क निगरानी में सुधार हुआ है, मगर सभी इलाकों में स्थिति समान नहीं है। असुरक्षा, समुदायों में अविश्वास और उपचार केंद्रों पर बढ़ता दबाव राहत प्रयासों को मुश्किल बना रहे हैं। संगठन ने मामलों की तेज पहचान, समय पर उपचार, मरीजों को अलग रखने और सुरक्षित अंतिम संस्कार सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।
2: कोलंबिया के पश्चिमी हिस्से में सोमवार 10 अगस्त को स्थानीय समय अनुसार 7:34 पर आए शक्तिशाली भूकंप के बाद तलाश और बचाव अभियान जारी है। संयुक्त राष्ट्र की टीमें भी राष्ट्रीय प्रशासन व आपदा प्रबंधन एजेंसी के साथ समन्वय में राहत कार्यों में जुट गई हैं। अब तक UN एजेंसियों के बताए गए नए सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि 300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 426 लोग लापता हैं और 4,500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: कोलंबिया के पश्चिमी हिस्से में आए 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद तलाश और बचाव अभियान जारी हैं। संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत कार्यों में जुट गया है। प्रभावित क्षेत्रों में आपात सामग्री, अतिरिक्त कर्मचारी और अन्य संसाधन भेजे जा रहे हैं। मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अनुसार लगभग 5,000 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें 387 पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। 24 स्वास्थ्य केंद्र और 550 से अधिक शैक्षणिक संस्थान भी प्रभावित हुए हैं। शुरुआती प्राथमिकताओं में अस्थायी आश्रय, स्वास्थ्य सेवाएं, खाद्य सुरक्षा और संरक्षण शामिल हैं।
2: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे, जिसे प्रस्तुत कर रही थी अंशु शर्मा, और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। वेटिकन में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय कैथोलिक विधायक नेटवर्क के 17वें वार्षिक सम्मेलन के प्रतिभागियों का अभिवादन कर संत पापा लियो 14वें ने कहा कि मानव प्रतिष्ठा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे युग के महान प्रश्न हैं, जिन्हें परिभाषित किया जाना और समझा जाना नितांत आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय कैथोलिक विधायक नेटवर्क के संरक्षक कार्डिनल क्रिस्टोफ शॉनबॉर्न, कार्डिनल बेहरा बुत्रोस राय तथा कार्डिनल चार्ल्स माउंग बो के नेतृत्व में संत पापा लियो 14वें से साक्षात्कार हेतु रोम आए विधायकों का संत पापा ने भावपूर्ण स्वागत किया और कहा कि हालांकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता नवीन अवसर प्रदान करती है, तथापि इस युग के लिए यह एक महान चुनौती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रौद्योगिक प्रगति एक नैतिक प्रश्न से मानवता का सामना करवाती है, और वह सिर्फ यह नहीं कि हम क्या कर सकते हैं, बल्कि यह कि हमें क्या करना चाहिए। वास्तव में आज मानव परिवार एक निर्णायक चुनाव का सामना कर रहा है। अपने विश्व पत्र मैनिफिका उमानितास का उल्लेख कर संत पापा ने कहा कि इस पत्र में मैंने लिखा है कि हम एक नई बाबुल की मीनार बनाने के प्रलोभन में पड़ सकते हैं, जहां शक्ति, प्रभावकारिता और नियंत्रण मनुष्य के चेहरे को छिपा दें, या फिर हम एक ऐसी सभ्यता का निर्माण कर सकते हैं जिसमें प्रौद्योगिकी प्रत्येक मानव के अखंड विकास में मदद प्रदान कर सके। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिक प्रगति और तकनीकी विकास का लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति की अलंघनीय गरिमा, सामान्य भलाई, वस्तुओं की सार्वभौमिक नियति, सहायकता और एकजुटता के लिए काम करते हुए विवेक हेतु सुनिश्चित मानदंड प्रदान करना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जन कल्याण के लिए जिम्मेदार विधायकों का कार्य तकनीकी के प्रशासन हेतु उपयुक्त नीतियां तैयार करना तथा नवीनता में रुकावटें उत्पन्न करने के बजाय इसे समझदारी से मार्गदर्शन प्रदान करना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ विधान को वैज्ञानिक और तकनीकी रचनात्मकता को प्रोत्साहन देना चाहिए और साथ ही मूलभूत मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। संत पापा लियो 14वें ने शुक्रवार 21 अगस्त को एक ट्वीट संदेश प्रकाशित कर स्मरण दिलाया है कि शांति के ईश्वर हमें घावों को शुद्ध करने, मेल मिलाप करने और प्रेम की सभ्यता के निर्माण की शक्ति प्रदान करते हैं। संत पापा लियो लिखते हैं, युद्ध के जख्म और धरती के क्षरण का मानव हृदय की स्थिति से गहरा संबंध है। मानवता को प्रताड़ित करने वाले संघर्ष कई तरह से अंदरूनी मतभेद और विभाजन का बाहरी रूप हैं। जब हृदय तहस नहस हो जाता तो रिश्तों पर असर पड़ता है और उनका प्रतिबिंब उन संरचनाओं में दिखने लगता है जिनका हम निर्माण करते हैं। वे लिखते हैं, तलवारों को पीटकर हल के फाल बनाने की ईसाया के ग्रंथ के दूसरे अध्याय के चौथे पद की भविष्यवाणी केवल देशों के लिए एक नजरिया नहीं है, बल्कि हर इंसान के लिए एक निमंत्रण है। यह हमें हानि या क्षति को जीवन में रूपांतरित करने के लिए आमंत्रित करती है। संत पापा आगे लिखते हैं, युद्ध के शस्त्रों की जगह शांति के ईश्वर हमें घावों को शुद्ध करने, मेल मिलाप करने और प्रेम की सभ्यता के निर्माण की शक्ति प्रदान करते हैं। इस तरह हमें आमंत्रित किया जाता है कि हम हमें सौंपे गए इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करें। सृष्टि की पारिस्थितिकी, मानवीय रिश्तों की पारिस्थितिकी और मानव हृदय की पारिस्थितिकी। इटली के तारांतो शहर में 21 अगस्त से 3 सितंबर तक जारी भूमध्य सागरीय खेलों के प्रतिभागियों को एक तार संदेश प्रेषित कर संत पापा लियो 14वें ने कहा कि खेलों का मकसद भाईचारा, स्वागत सत्कार, एकात्मता और शांति होना चाहिए। गुरुवार को तारांतो के कैथोलिक महागिरजाघर में भूमध्य सागरीय खेलों के उद्घाटन के उपलक्ष्य में तारांतो के महाधर्माध्यक्ष चीरो मिनियेरो ने ख्रीस्त्याग प्रवचन में कहा कि खिलाड़ी साहसी होता है और वह गलतियां करने से नहीं डरता। भूमध्य सागरीय खेलों में यूरोप के 26 देशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ख्रीस्त्याग समारोह के अवसर पर ही वैटिकन राज सचिव कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन द्वारा प्रेषित संत पापा लियो 14वें का तार संदेश पढ़ा गया, जिसमें संत पापा ने कहा है कि खेलों को भाईचारे, प्रेम और शांति का माध्यम होना चाहिए। संत पापा ने लिखा, खेल के ये दिन संस्कृतियों और लोगों के बीच सेतुओं का निर्माण करने तथा मेहमान नवाजी, एकता और शांति को बढ़ावा देने का सुनहरा मौका है।
उन्होंने कहा, वस्तुतः खेल के जरिए ही उम्मीद की एक नई हवा प्रवाहित हो सकती है जो हथियारों का इस्तेमाल तो तुरंत नहीं रोकेगी, तथापि अधिक भ्रातृत्व वाली इंसानियत बनाने की संभावना का सुझाव दे सकेगी। इटली के रिमिनी शहर में कम्युनियन एंड लिबरेशन शीर्षक से प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का नेतृत्व करने इस वर्ष संत पापा लियो 14वें भी शनिवार को रिमिनी शहर का दौरा कर रहे हैं, जहां उनके दर्शन को 2,00,000 श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। कम्युनियन एंड लिबरेशन के 47वें सम्मेलन के सह आयोजक रिमिनी के कैथलिक महाधर्माध्यक्ष निकोलो अनसेल्मी ने कहा कि निश्चित रूप से संत पापा की उपस्थिति युवाओं में और दूर दूर से उनके दर्शन हेतु पहुंचे उत्सुक लोगों में अपनी छाप छोड़ेगी। धर्माध्यक्ष अनसेल्मी के अनुसार शनिवार 22 अगस्त को समुद्र तट पर संत पापा लियो के नेतृत्व में आयोजित ख्रिस्तियाक समारोह में लगभग 2,00,000 श्रद्धालु उपस्थित होंगे, जबकि रिमिनी के कैथलिक महागिरजाघर में 650 श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। धर्माध्यक्ष ने कहा कि युखरिस्त इस संपूर्ण दिवस का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होगा। संत पापा लियो 14वें से पूर्व सन 1982 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने रिमिनी की प्रेरित यात्रा की थी। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, अफगानिस्तान में तालिबान शासन के 5 वर्ष पूरे होने पर संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों समेत आम लोगों पर पाबंदियां लगातार बढ़ रही हैं। अफगान लड़कियों की एक पूरी पीढ़ी शिक्षा से वंचित हो रही है। मानव अधिकार विशेषज्ञों ने कहा कि लैंगिक आधार पर लोगों को जानबूझकर उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित करना मानवता के विरुद्ध उत्पीड़न के अपराध के दायरे में आता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहा है। पाबंदियों का असर महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच पर भी पड़ा है। विशेषज्ञों ने कहा, महिलाओं को उनके पहनावे या साथ में पुरुष अभिभावक न होने के कारण अस्पतालों से लौटा दिया गया, जिससे वे स्वास्थ्य सेवाओं के अपने अधिकार से वंचित हुई। देश की 1/3 से अधिक आबादी गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रही है। वहीं लगभग 40 लाख बच्चे गंभीर कुपोषण से जूझ रहे हैं। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: अफगानिस्तान में तालिबान शासन के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं, मगर महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों पर पाबंदियां लगातार बढ़ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के अनुसार तालिबान प्रशासन ने शिक्षा, कामकाज और आवाजाही की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने वाले 100 से भी अधिक फरमान जारी किए हैं। यूएन विमेन ने इसे दुनिया में महिला अधिकारों का सबसे गंभीर संकट बताया है। एजेंसी के अनुसार इन पाबंदियों ने भेदभाव को व्यवस्था का हिस्सा बना दिया है और महिलाओं को सार्वजनिक जीवन से लगभग बाहर कर दिया है। यूनेस्को ने कहा है कि अफगानिस्तान दुनिया का एकमात्र देश है जहां प्राथमिक स्तर के बाद लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा पर औपचारिक प्रतिबंध है। अनुमान है कि 24 लाख लड़कियां भी माध्यमिक शिक्षा से वंचित हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने कहा है कि ये दमन अब संस्थागत लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक रंगभेद का रूप ले चुका है। उन्होंने देशों से लैंगिक रंगभेद को मानवता के विरुद्ध एक अलग अपराध के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कानून में शामिल करने के प्रयासों का समर्थन करने की अपील की है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों पर स्पष्ट और मापने योग्य प्रगति के बिना तालिबान प्रशासन से संबंध सामान्य नहीं किए जाने चाहिए। इस बीच सहायता धनराशि में भारी कटौती से स्वास्थ्य, भोजन और जीवन रक्षक सेवाओं पर दबाव बढ़ रहा है। WFP के अनुसार अफगानिस्तान में 1,40,00,000 लोग भूख के संकट का सामना कर रहे हैं।
2: फरवरी 2022 को यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से संयुक्त राष्ट्र ने कम से कम 16,874 आम नागरिकों के मारे जाने और 51,173 के घायल होने की पुष्टि की है। मृतकों में 820 और घायलों में 3,126 बच्चे शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार निगरानी मिशन के अनुसार यूक्रेन में इस वर्ष के जुलाई के दौरान हताहत आम नागरिकों की संख्या मार्च 2022 के बाद से सबसे अधिक रही। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: यूक्रेन में जुलाई महीने में आम नागरिकों के हताहत होने की संख्या मार्च 2022 के बाद सबसे अधिक रही है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निगरानी मिशन का कहना है कि इस वर्ष नागरिकों को पहुंची हानि लगातार बढ़ रही है और जुलाई में ये नए उच्च स्तर पर पहुंच गई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की सहायक प्रवक्ता डैनिला ग्रॉस डी एल्मेडा ने जानकारी देते हुए बताया,
4: The UN Human Rights Monitoring Mission today said that more civilians were killed or injured in the country.
3: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निगरानी मिशन ने कहा है कि जुलाई 2026 में यूक्रेन में मार्च 2022 के बाद सबसे अधिक आम नागरिक मारे या घायल हुए। मिशन ने पुष्टि की है कि जुलाई में कम से कम 437 आम नागरिक मारे गए और 2610 घायल हुए। ये पिछले महीने की तुलना में 30% और जुलाई 2025 की तुलना में 70% अधिक है। हालांकि वास्तविक संख्या इससे अधिक हो सकती है क्योंकि निगरानी मिशन अब भी जानकारी की पुष्टि कर रहा है।
4: The actual figure is likely higher as the monitoring mission continues to verify information.
3: संयुक्त राष्ट्र महासचिव की सहायक प्रवक्ता डैनियला ग्रॉस डी एल्मेडा के शब्द। यूएन निगरानीकर्ताओं के अनुसार लंबी दूरी की मिसाइलें, ड्रोन, ग्लाइड बम और अग्रिम मोर्चे के पास कम दूरी के ड्रोन हमले नागरिकों के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं। जुलाई में राजधानी कीव भीषण हमलों से सबसे अधिक प्रभावित शहरों में रही।
2: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य के अस्थिर पूर्वी हिस्सों में इबोला संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है कि मरीजों का समय रहते पता लगाकर उन्हें अलग रखना मुश्किल हो जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला का मौजूदा प्रकोप अब देश के इतिहास का सबसे घातक प्रकोप बन गया है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार इस बीमारी से अब तक 2,325 लोगों की मौत हो चुकी है। यह संख्या DRC में 2018 से 2020 के इबोला प्रकोप में हुई 2,299 मौतों के आंकड़े को पार कर गई है। उस प्रकोप को अब तक देश का सबसे घातक इबोला प्रकोप माना जाता था। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला प्रकोप पर काबू पाने की कोशिशें तेज हुई हैं, लेकिन संक्रमण अब भी बहुत तेजी से फैल रहा है। WHO के अनुसार संक्रमित लोगों के संपर्क में आए अधिक लोगों की पहचान हो रही है, लेकिन कई संक्रमण श्रृंखलाएं अब भी पकड़ में नहीं आ रही हैं। कई मरीज उपचार के बिना ही बीमारी के गंभीर चरण तक पहुंच रहे हैं। प्रकोप मुख्य रूप से इतुरी प्रांत में केंद्रित है, लेकिन नॉर्थ कीवू और हॉट उले में भी मामले सामने आ रहे हैं। प्रभावित 5 प्रांतों के 53 स्वास्थ्य क्षेत्रों में संक्रमण फैल चुका है। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडेनॉम घेब्रेसस ने चेतावनी देते हुए कहा,
5: इट्स ऑलरेडी द सेकंड बिगेस्ट इबोला एपिडेमिक ऑन रिकॉर्ड।
3: डॉक्टर टेड्रोस कह रहे हैं कि अब तक दर्ज दूसरा सबसे बड़ा इबोला प्रकोप है और यह पिछले सभी इबोला प्रकोपों से अधिक तेजी से फैल रहा है। WHO ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क निगरानी में सुधार हुआ है, मगर सभी इलाकों में स्थिति समान नहीं है। असुरक्षा, समुदायों में अविश्वास और उपचार केंद्रों पर बढ़ता दबाव राहत प्रयासों को मुश्किल बना रहे हैं। संगठन ने मामलों की तेज पहचान, समय पर उपचार, मरीजों को अलग रखने और सुरक्षित अंतिम संस्कार सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।
2: कोलंबिया के पश्चिमी हिस्से में सोमवार 10 अगस्त को स्थानीय समय अनुसार 7:34 पर आए शक्तिशाली भूकंप के बाद तलाश और बचाव अभियान जारी है। संयुक्त राष्ट्र की टीमें भी राष्ट्रीय प्रशासन व आपदा प्रबंधन एजेंसी के साथ समन्वय में राहत कार्यों में जुट गई हैं। अब तक यूएन एजेंसियों के बताए गए नए सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि 300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 426 लोग लापता हैं और 4,500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: कोलंबिया के पश्चिमी हिस्से में आए 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद तलाश और बचाव अभियान जारी हैं। संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत कार्यों में जुट गया है। प्रभावित क्षेत्रों में आपात सामग्री, अतिरिक्त कर्मचारी और अन्य संसाधन भेजे जा रहे हैं। मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अनुसार लगभग 5,000 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें 387 पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। 24 स्वास्थ्य केंद्र और 550 से अधिक शैक्षणिक संस्थान भी प्रभावित हुए हैं। शुरुआती प्राथमिकताओं में अस्थायी आश्रय, स्वास्थ्य सेवाएं, खाद्य सुरक्षा और संरक्षण शामिल हैं।
2: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे। जिसे प्रस्तुत कर रही थी अंशु शर्मा। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। वेटिकन में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय कैथोलिक विधायक नेटवर्क के 17वें वार्षिक सम्मेलन के प्रतिभागियों का अभिवादन कर संत पापा लियो 14वें ने कहा कि मानव प्रतिष्ठा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे युग के महान प्रश्न हैं, जिन्हें परिभाषित किया जाना और समझा जाना नितांत आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय कैथोलिक विधायक नेटवर्क के संरक्षक कार्डिनल क्रिस्टोफ शॉनबॉर्न, कार्डिनल बेहरा बुत्रोस राय तथा कार्डिनल चार्ल्स माउंग बो के नेतृत्व में संत पापा लियो 14वें से साक्षात्कार हेतु रोम आए विधायकों का संत पापा ने भावपूर्ण स्वागत किया और कहा कि हालांकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता नवीन अवसर प्रदान करती है, तथापि इस युग के लिए यह एक महान चुनौती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रौद्योगिक प्रगति एक नैतिक प्रश्न से मानवता का सामना करवाती है, और वह सिर्फ यह नहीं कि हम क्या कर सकते हैं, बल्कि यह कि हमें क्या करना चाहिए। वास्तव में आज मानव परिवार एक निर्णायक चुनाव का सामना कर रहा है। अपने विश्व पत्र मैग्निफिका उमानिटास का उल्लेख कर संत पापा ने कहा कि इस पत्र में मैंने लिखा है कि हम एक नई बाबुल की मीनार बनाने के प्रलोभन में पड़ सकते हैं, जहां शक्ति, प्रभावकारिता और नियंत्रण मनुष्य के चेहरे को छिपा दें, या फिर हम एक ऐसी सभ्यता का निर्माण कर सकते हैं जिसमें प्रौद्योगिकी प्रत्येक मानव के अखंड विकास में मदद प्रदान कर सके। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिक प्रगति और तकनीकी विकास का लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति की अलंघनीय गरिमा, सामान्य भलाई, वस्तुओं की सार्वभौमिक नियति, सहायकता और एकजुटता के लिए काम करते हुए विवेक हेतु सुनिश्चित मानदंड प्रदान करना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जन कल्याण के लिए जिम्मेदार विधायकों का कार्य तकनीकी के प्रशासन हेतु उपयुक्त नीतियां तैयार करना तथा नवीनता में रुकावटें उत्पन्न करने के बजाय इसे समझदारी से मार्गदर्शन प्रदान करना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ विधान को वैज्ञानिक और तकनीकी रचनात्मकता को प्रोत्साहन देना चाहिए और साथ ही मूलभूत मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। संत पापा लियो 14वें ने शुक्रवार 21 अगस्त को एक ट्वीट संदेश प्रकाशित कर स्मरण दिलाया है कि शांति के ईश्वर हमें घावों को शुद्ध करने, मेल मिलाप करने और प्रेम की सभ्यता के निर्माण की शक्ति प्रदान करते हैं। संत पापा लियो लिखते हैं, युद्ध के जख्म और धरती के क्षरण का मानव हृदय की स्थिति से गहरा संबंध है। मानवता को प्रताड़ित करने वाले संघर्ष कई तरह से अंदरूनी मतभेद और विभाजन का बाहरी रूप हैं। जब हृदय तहस नहस हो जाता तो रिश्तों पर असर पड़ता है और उनका प्रतिबिंब उन संरचनाओं में दिखने लगता है जिनका हम निर्माण करते हैं। वे लिखते हैं, तलवारों को पीटकर हल के फाल बनाने की ईसाया के ग्रंथ के दूसरे अध्याय के चौथे पद की भविष्यवाणी केवल देशों के लिए एक नजरिया नहीं है, बल्कि हर इंसान के लिए एक निमंत्रण है। यह हमें हानि या क्षति को जीवन में रूपांतरित करने के लिए आमंत्रित करती है। संत पापा आगे लिखते हैं, युद्ध के शस्त्रों की जगह शांति के ईश्वर हमें घावों को शुद्ध करने, मेल मिलाप करने और प्रेम की सभ्यता के निर्माण की शक्ति प्रदान करते हैं। इस तरह हमें आमंत्रित किया जाता है कि हम हमें सौंपे गए इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करें। सृष्टि की पारिस्थितिकी, मानवीय रिश्तों की पारिस्थितिकी और मानव हृदय की पारिस्थितिकी। इटली के तारांतो शहर में 21 अगस्त से 3 सितंबर तक जारी भूमध्य सागरीय खेलों के प्रतिभागियों को एक तार संदेश प्रेषित कर संत पापा लियो 14वें ने कहा कि खेलों का मकसद भाईचारा, स्वागत सत्कार, एकात्मता और शांति होना चाहिए। गुरुवार को तारांतो के कैथोलिक महागिरजाघर में भूमध्य सागरीय खेलों के उद्घाटन के उपलक्ष में तारांतो के महाधर्माध्यक्ष चीरो मिनियरो ने ख्रीस्त्याग प्रवचन में कहा कि खिलाड़ी साहसी होता है और वह गलतियां करने से नहीं डरता। भूमध्य सागरी खेलों में यूरोप के 26 देशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ख्रीस्त्याग समारोह के अवसर पर ही वैटिकन राज सचिव कार्डिनल पियत्रो पारोलिन द्वारा प्रेषित संत पापा लियो 14वें का तार संदेश पढ़ा गया, जिसमें संत पापा ने कहा है कि खेलों को भाईचारे, प्रेम और शांति का माध्यम होना चाहिए। संत पापा ने लिखा, खेल के ये दिन संस्कृतियों और लोगों के बीच सेतुओं का निर्माण करने तथा मेहमान नवाजी, एकता और शांति को बढ़ावा देने का सुनहरा मौका है।
उन्होंने कहा, वस्तुतः खेल के जरिए ही उम्मीद की एक नई हवा प्रवाहित हो सकती है जो हथियारों का इस्तेमाल तो तुरंत नहीं रोकेगी, तथापि अधिक भ्रातृत्व वाली इंसानियत बनाने की संभावना का सुझाव दे सकेगी। इटली के रिमिनी शहर में कम्युनियन एंड लिबरेशन शीर्षक से प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का नेतृत्व करने इस वर्ष संत पापा लियो 14वें भी शनिवार को रिमिनी शहर का दौरा कर रहे हैं, जहां उनके दर्शन को 2,00,000 श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। कम्युनियन एंड लिबरेशन के 47वें सम्मेलन के सह आयोजक रिमिनी के कैथलिक महाधर्माध्यक्ष निकोलो अनसेल्मी ने कहा कि निश्चित रूप से संत पापा की उपस्थिति युवाओं में और दूर दूर से उनके दर्शन हेतु पहुंचे उत्सुक लोगों में अपनी छाप छोड़ेगी। धर्माध्यक्ष अनसेल्मी के अनुसार शनिवार 22 अगस्त को समुद्र तट पर संत पापा लियो के नेतृत्व में आयोजित ख्रिस्तियाग समारोह में लगभग 2,00,000 श्रद्धालु उपस्थित होंगे, जबकि रिमिनी के कैथलिक महागिरजाघर में 650 श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। धर्माध्यक्ष ने कहा कि युखरिस्त इस संपूर्ण दिवस का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होगा। संत पापा लियो 14वें से पूर्व सन 1982 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने रिमिनी की प्रेरितिक यात्रा की थी। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।